यहाँ एकजना महिला सर्पले टोकेर इमर्जेन्सी परे, तुरुन्तै उपचार केन्द्रमा लानु पर्यो। राजमार्ग 4 100 मिटर पश्चिम देब्रेपट्टि छौँ है हामी। मुकेश झट्टै आऊ है सबै काम छाडेर।